नानक मेर शरीर का एक रथिक रथवा हो जुग जुग फिर उठाइए ज्ञानी बुझेता है। सात जुरा संतों का धर्म ग्रथवा त्रेते रथ जते का जोर ग्रथवा द्वापरा तप

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है।

जे जान सुब्रह्म कर्म सब पोकट निश्चो कर्म कहो नानक नेचो त्यावे बिन सतगुर बाट न।

0: देख पसंतोक सूत चत गंडी सतवट एजने उजी का है ता पांडे कात ना टुटे ना मलगे ना जड़े ना जाए तन सुमान स्नान का जोगा चले पाए चौकर मुलड़ाया बह चौके पाए सिखा कान चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थेया ओह मुआ चढ़ पया वे तक आ गया महला पहला
1: लक चोरियां।

पहला जे महाका कर्म है कर्म पितरी दे अके वस्यानी है पितरी छोर करे बड़िए हाथ दलाल के मुसबी करे नानक के सो मिले जे खट्टे।

खिलाफ ही करना क्यों खिलाफ ही तो तारी है देखा कि तो अपना तरकची बक्की सारी है जो आए सो चल से सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है कि साहिब मतलब सारी है अपन हथी अपना आपे ही का सवारी है।

तंत्र जपनी हरता के परवा आप कराए शक्ति फिर आप कराए मा एक ना गली जंजीरें एक पूरी चढ़ाए बस्या आप कराए करे आप कैसे करी पुकार नान करना जिनकी आ किसी कर।

जैसा बालक पाए सुपाई, लख अपराध कमावे, कर उपदेश छिड़के बहु पाती, बहुड़ पिता गल लावे, पिछले

हर अंतर जामी सब विद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहन कथन ना पीज गोबिंद हर भाव पैजर खाइए आपर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाइए।

गए मशक्कत का नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

पाठ कीर्त के गुर राम दास राखो शरणाई दया करण दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन है दयाल।

गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

चारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ। साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलियह दूख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वडियाई, आख थकी कीमत नहीं पाई। जे सब मिल कै आखण पाहे, वड्डा न होवै घाट न जाए। ना ओह मरै न होवै सोग, देंदा रहै न चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोय, ना को होवा ना को होय। जे वड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात। खसम विसारह ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सत गुर सत पुरखा। बिनौ करौ गुर पास, हम कीरे किरम सत गुर सरणाई। कर दया नाम परगास, मेरे मीत गुरदेव। मोकौ राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई। हर कीरत हमारी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास।

या सैल पत्थर मह जंत उपाई ताकारिजक आज्ञा कर तरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होई चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमारे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा। राख ली हो मोहे राखन हारी, साहेब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोहबद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशाने, काट काट के पाट पाट की जाने। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्टि सब तारे, आप आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बीद पीद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ।

महामूढ़कश्यपि न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप आपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उतपुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट पयो संकर इकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख्य संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित होए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताकि काल निकट नह ऐ है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई एक बार जिन तुमै संभारा काल फास ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दा

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं

हाउ अभिमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संची एह काया एह मिथ्या काची गगरी जिन है निवाज साज हम किए तिस है बिसार अवर लगरी संधिक तू हे साध नहीं कहिया शरण परे तुमरी पगरी कह कबीर एह बिनती सुनिया हो मत काला हो जाम की खबरी देख बेको दृष्ट न दर्श दिखाए बेको कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए कहबे को सुरत है ना श्रवण सुन बे को कैसे गुण निद गुण सुनिए सुनाइए मन मैं ना गुरमत गुरमत मैं ना मन नेह चल हुए ना उन मन लेवलाई अंग अंग भंग रंग रूप कोलहीन दीन कैसे बहु नायक की नायिका कहाई है हर दया प्रभ तारहु पाखण हम तारहु

भूले सोत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सुख टल गुर सेवियन, एहन सहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होए सिफत।

सोरठ महला पांजवा गौर अपने बलहारी जिन पूरन पैज सवारी मन चिंदिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया गुर अपने बलिहारी जिन पूरन पैज सवारी।

0: जन्म जना मिलहार जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपार नाम दवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाए, गुर प्रसाद नानक मत पाए।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तृत मात, दिवस रात दुई दाई दया, खेल सगल जगत चंगियाँ बुरी।

गुर प्रसाद नानक मत पाई सलो पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगे।

0: और सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तुदे आखे लख करोड़, सच्चे सब तान सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिप सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुद सच्चे पातशाह, नानक सच तिहाइन सच, जो मर जमै सो कच, निकच महला पहला।
1: वड्डी डे वड्डा नाओ, वड्डी वड्याई सच ने आओ, वड्डी वड्याई जने चलथाओ, वड्डी वड्डी जाने लाओ, वड्डी वड़े बुझा सपाओ, वड्डी वड़े जे पुछना दात, वड्डी वड्याई जा पे आप, नानक कार ना कथनी जाए, कीता करना सर्व जाए महला दूजा।
0: एहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास, इक ना हुक्म समाए लै, इक ना हुक्मे करे विनाश, इक ना पाने कढ़ लै, इक ना माया विच विनाश, ए पै आख ना जपै जे किसे आ नैरा,
1: नानक गुरमुख जानी है जा

जिस तू दे तिस मिले सच था तिनी सच कमाया, सतगुरु मिले सच पाया तिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाननी।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खापोए खार, कूड़ कूरे नेहो लगा विसरिया करतार, किस नल की चै दोस्ती सब जग चलनहार, कूड़ मिट्टा कूड़ माखियो कूड़ डूबे फूर, नानक विखाने बेनती तुद बार कूड़ो कूड़ महल।

नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाद सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम स्यों कल नाम सुर नर बो है नाम।

अहिंस सहजो सुपाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफ दुख संबंधी नूर अरसह कुरसह तुत डिठे सचे पात सहा मल जन्म जन्म दी सजन सचा पात साह सिर सहांद जिस पास बैठे आ सोही है सबना दावे सजन सचा पात साहु सिर सहांद जिस पास बैठे आ सोही है सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी

आठ पहर हर का जस रवणा दिखठ गौरी लाथी सांग में लाए लिया मेरा करता संत साध पै साथी।